0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। लिसनिंग टू कंट्रीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरंग 94.7
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.
5: फीमेल फैमिली फिजिशियन दा स्वागत करता है।
6: गर्मजोशी, समझदारी ते प्यार नाल ओ तुहाडे परिवार नू कंफर्टेबल ते वेल केयर्ड फील करवाउण लई हमेशा तैयार है।
5: हुण तुसी उनां नाल इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ते पंजाबी विच वी गलबात कर सकदे हो ताकि तुसी घर वर्गा एहसास महसूस करो।
6: नवे पेशेंट्स हुण एक्सेप्ट हो रहे ने, अज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो।
5: कॉल करो 587-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक। वॉक-इन्स सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक।
6: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 587-360-6890।
5: थोड़े परिवार दी सेहत साड़ी जिम्मेदारी।

0: और बीना जी हैं आपके साथ तो
1: वन गुड थिंग अबाउट आवर जागरण इज आवर फूड विल नॉट बी आउटडोर दिस टाइम इट विल बी इनडोर सो इवन इफ इट्स रेनिंग आउटसाइड और स्नोइंग और व्हाटएवर वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल वेदर एंड विल हैव प्रॉपर फूड वेन्यूज
0: आपको एक माइक भी यूज करना
1: है अच्छा वो भी यूज करना है वो मैं भूल जाती हूँ So, I don't know if everybody heard that or not, but the food, लेकिन food हमारा indoor होगा so आप आराम से आइए और ऐसा कुछ नहीं है कि raining हो तो भी आप खुशी से आइए और enjoy करिए
0: बिल्कुल जी बड़ा बहुत अच्छा जागरण है ये 12वां annual जगराता है जिन्होंने कहते हैं आप डेरा बैंक्वेट हॉल चो जा रहे थे 13 तरीक न
2: पोस्टर देखोगे किसी भी कंपनी की कोई भी किसी की कोई प्रमोशन नहीं मिलेगी क्योंकि साडा मकसद ही ये है कि भी ए सारिया का है ये सोसाइटी का जागरण है ना कि कोई कमर्शलाइज है असि कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज जिनी भी कमर्शलाइज हैगी घटाया जाए ना के ओनू वधाउन दी असि कोशिश करिए देखो बिजनेस हैगे उन्होंने
0: दूजे जगराते वाले करदे
2: हर एक देखो किसे किसे दा आपा किसे दिन असि तां अपनी ही गल कर रहे हैं
0: मतलब जेड़े
2: कोई भी जिद्दां असि अज तक जदों तो असि शुरू कीता होया जागरण ओ साडा पहला ही यही रीजन है कि भी इहदे विच कोई इह ना कह सके मेरा है साडे तुसी नाम भी नहीं देख सकदे सानू नाम भी नहीं लभणगे तो असि फोन नंबर भी इहनां च कोशिश करदे हां कि इक ही नंबर रहे ओ नंबर भी कोशिश किया जाता कि एक सोसाइटी का नंबर होवे ता जो ए ज्यादा ये चीजा ना हो मेरा मेरा आप छुड़वाना है आप तेरा करना है सारा कुछ ता ही नंबर भी तेरा आ गया तो इस करके सारा कुछ तेरा ही है माता का ही है सारा कुछ तो यही लैके चलिए अपन बस यही सी कहने पे भी तुसी इन चीजा प्यार बधाओ जिन्ना बधा सकते हैं मिलो जुलो साडिया कमिया सानू दसो असि यही सब तुहाडे तो पुछना मांगते हैं जे असि कुछ कुछ भी किसी तरह की भी कोई असि चीज मिस करते पे सानू गाइड करो सानू दसो असि कोई चीज पिछले साल भुले हुई है इस साल करैक्ट करिए बाकी अजकल तुसी जानते हो कि जागरण होने बहुत घटे है क्योंकि यह अजकल इंडिया दे विच भी सारी ज्यादातर चौंकियां होने लग पई उहदा रीजन की ब्याह शादियां दे विच क्योंकि 12 बजे तो बाद बैठना बड़ा मुश्किल लोगों नू लगता है इत्थे मैं बहुत असि भाग्यशाली हाँ कि जी सानू इत्थे लोग जिहड़े है ਉਹ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 300-400 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਆਰਤੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਗ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋਟੀਆਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ
0: ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜ ਵਰਮਾ ਜੀ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟੀਮ ਜੇ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਆ
2: ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ
0: ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ
1: ਹਮੇ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ जैसे हमने बोला कि $75,000 रेज करना कोई
0: खाला जी का वाला
1: नहीं है आसान काम नहीं है है ना तो अवर ई ट्रांसफर इज hysocietyofcalgary@gmail.com और यू कैन कॉल अस एट 403-827-2491 इट वुड बी वेरी अप्रिशिएटिव इफ यू कैन डोनेट व्हाटएवर अमाउंट that you can and jaise hum gujarati mein bolte hain tipe sarovar bharai that means jo bhi aap kankar ki tarah bhi hum denge to pura ghada bhar jayega
0: aap gujarati hain ye
1: hum gujarati hai
0: aur jagrata punjabi hai
1: that's okay hum

0: जय माता दी गुजराती या पंजाबी नहीं जगराता सभी के लिए सभी, है और जैसे अभी राकेश जी ने थोड़ी देर पहले बोला था कि आजकल सोसाइटी में डिप्रेशन वगैरह इतना बढ़ रहा है तो जैसे कभी भी बच्चे परेशान होते हैं तो वो अपने माँ बाप के पास जाते हैं तो जब हम यहाँ पे परेशान होते हैं मोस्टली हम लोग के माँ बाप यहाँ नहीं है तो ये हम सब के लिए मौका है कि हम सब अपनी माँ के पास जाएं और अपनी प्रॉब्लम्स को कुछ देर के लिए भूल जाएं और जितना हो सके पूरे मन से इसके अंदर पार्टिसिपेट करें.
1: वेरी नाइस, बड़ा अच्छा. ये हमारा हंसी मजाक चलता रहता है गुजराती और पंजाबी का. आपको पता भी गुजरातियों की जो टीम है ना जिसको गुजरात टाइटन बोलते हैं तो उसको जो लीड करने वाला वो पंजाबी है.
2: जी बिल्कुल.
1: इसलिए क्रिकेट का आईपीएल का जो है इसलिए पंजाबी जो है ना वो हमेशा लीड करते हैं.
2: ऐसे नहीं है. बाकी मैं दीपिका जी को बोलूंगा कि आप एक जागरण हम क्यों करते हैं आप प्लीज उनके बारे में बताइए थोड़ा कि उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए भी क्या इसका पीछे का हमारा क्या रीजन क्या है.
0: हाँ जी, तो जागरण जो है ये एक्चुअली संस्कृत वर्ड है एक जिसका मतलब होता है जागना, पूरी रात जागना. और जागने का मतलब ये नहीं है कि जैसे आप खाली रात को जाग गए. जागने का मतलब ये भी है कि आप अपने लाइक यू कम आउट ऑफ योर यू नो इनसिक्योरिटीज, उनसे बाहर आना, फ्रॉम नॉट हैविंग नॉलेज, अपने जो आपके पास अज्ञानता है उससे बाहर आना, उन सब चीजों से बाहर निकल के बेसिकली कमिंग टू एनलाइटनमेंट, वो आना. और जो माता का जो जागरण है, माता जो है ये तीनों शक्ति जो है हमारी उनको मिलके बनी है, ब्रह्मा विष्णु महेश. और जो महिषासुर जो डीमन थे इनका इन्होंने संहार करने के लिए इनका वो अवतार जो था वो हुआ था. एंड वो त्रिशक्ति हैं तो वो ये भी दर्शाती हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों डिनोट करते हैं क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन. तो वैसे ही एक औरत क्रिएट भी करती है अपनी फैमिली को, बच्चों को, प्रिजर्व भी करती है अपने घर को, अपने घर के एनवायरमेंट को. और जब बहुत जो चीजें उसके घर में नेगेटिव होती है उनको डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी भी रखती है, लाइक ऑल दी नेगेटिविटी इन दी हाउस. सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन नॉट जस्ट फॉर लाइक माता बट फॉर एवरी वेमेन एंड एवरी फीमेल चाइल्ड ऑल्सो. एंड इसीलिए हम जब हम नवरात्रि मनाते हैं साल में दो बार, उसमें हम कंजक पूजा भी इसीलिए करते हैं ताकि हम जो माता का छोटा स्वरूप है उनको अपनी बेसिकली श्रद्धा से है उनको ऑनर कर सकें और हम अपने आप को याद दिला सकें कि माता का एक्चुअली क्या एग्जिस्टेंस का मतलब है. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट सोशल मैसेज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड एंड टुडेज सोसाइटी.
1: थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस सो मच एनलाइटनमेंट अबाउट द जागरण और जगराता. आप पंजाबी जगराता ही कहते रहने जगराता कर लगे
2: हैं.
1: बट अच्छी अच्छी चीजें बताइए. एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं फिर एक बार जाने से पहले हम दोबारा से इसके ऊपर बात करते रहते हैं. एक छोटी सी
3: की तुहाड़ी अपनी वेबसाइट है पर तुसी टैक्स फोटोज या वीडियो चेंजेस खुद नहीं कर पाते तो तुहानू लोड है आई वेब गाय वाले 403-400-0203-403-400-0203 ते कॉल करन दी www.iwebguy.ca.
4: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर.
5: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है.
4: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से.
5: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर.
4: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है.
5: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं.
4: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890. लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक.
5: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी.
6: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए. सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर जहां होता है एनर्जी, एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन. चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं. हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में. ज्यादा पहचान ज्यादा

0: फ्लाइट बहुत लेट हो गई। खान ले बर्गर ले लिए
1: ना जी, अप्पा ते गर्मा गर्म रोटी खावांगे।
0: माले नखरे ना करो, मेथो रात दे 3 बजे रोटियां नहीं पकदियां।
1: ओहो तो हानू नहीं कष्ट देना, अप्पा चलना है समोसा हाउस इंडियन कुजीन एंड स्वीट्स, जो 24 घंटे खुले हुंदे ने।
2: समोसा हाउस इंडियन कुजीन, ब्रेकफास्ट विच गर्मा गर्म परौठे, लंच एंड डिनर विच पूरियां, छोले भटूरे, फिश टिक्का, चाइनीज इंडियन फूड, हर प्रकार दी मिठाइयां अते केटरिंग भी कर दे ने। इंडियन कॉफी अते कुल्लर स्पेशल चाह भी इना कोलो मिलदी है। हर प्रकार दे खाने वाले शानदार रेस्टोरेंट समोसा हाउस इंडियन कुजीन एंड स्वीट्स, ओपन 24 आवर्स, यूनिट 2154, 4310104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कॉल 403-400-CART-CART-CART 403-461-6161।
3: कैनेडा विच रहंदिया इंश्योरेंस दी बहुत अहमियत है। किसी भी तरह दी इंश्योरेंस ले पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो। सुपर वीजा, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, RESP दिया वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू। ए इंश्योरेंस लई नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन। होर जानकारी लई पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो।
4: नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका, जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस। एना ही नहीं, एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट स्वीट भी बनाईया जा सकदियां ने। बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका। फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन। वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमे नू 403-617-2111 ते अमन गिल नू भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते। बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है। अपने घर दा दूजा ना आया सुकून ते कैनेडा च घर खरीदना एक वड्डी चुनौती।
5: घर खरीदण तो पहला इत्मीनान नाल किसे प्रोफेशनल दी सलाह जरूर लाओ।
4: वधिया घर खरीदना, पैसे बचाउणे ने, सिरदर्दी तो भी बचना, ते याद कर लो एक नाम मनदीप सिंह गिल।
5: सिर्फ घर खरीदण ले ही नहीं बल्कि बेचना भी होवे तां बिल्कुल सही सलाह देणगे मनदीप सिंह गिल।
4: घर खरीदण ते वेचण लई मैक्सवेल सेंट्रल दे नाल काम करदे मनदीप सिंह गिल देणगे वधिया सलाह ते प्रोफेशनल सर्विस।
5: ਜੋਗ ਰੀਅਲਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 403-617-1868।
4: ਜੇਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ mandeep.realtor।
5: ਮੈਕਸਵੈਲ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਰੀਅਲਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 403-617-1868।
6: ਵੇ ਜਿੰਦਰਾ ਮੈਡ, ਆ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ।
7: ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ?
8: ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, JFS ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
9: JFS ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, LMIA, ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਅਪੀਲਸ। ਕਾਲ 403-436-6000 ਔਰ 403-406-2004।

0: वे जिंदरा मैल आ मेरा भतीजा आ मेरी भैन दी कुड़ी ते आ मेरी भुआ दी ननान दी कुड़ी है
1: ओ तू सारा टब्बर इकट्ठा करी फिरदा
2: ओ पाजी ये असी नहीं JFS इमिग्रेशन वाले ने इकट्ठा करके दिता है JFS इमिग्रेशन फॉर स्टडी परमिट वर्क परमिट स्पॉन्सरशिप LMIA परमानेंट रेजिडेंसी या रिफ्यूजी एंड अपील्स कॉल 403-436-6000 और 403-406-2004
3: कैलगरी वासियों की तुसी लंबी लाइना अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो खुद फिकर छड़ो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार ओइसे स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन चाहे गल होवे बच्चा

0: फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001 सोनिक इंश्योरेंस।
1: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया।
2: कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी हिंदी उर्दू या फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम सब दा माण सब दी चाहत अपनी सुपनमई कार खरीदन लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो या फिर फोन कर लो 4039036757।
1: मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स।
3: की तुहाडे परिवार विच किसे नू होम केयर दी जरूरत है? अपने ही घर अंदर अपनी बोली विच होम केयर प्राप्त करन लई YYC होम केयर वालेयां दा अगला संदेश सुनो।
4: सत श्री अकाल जी, मेरा नाम वीरपाल कौर टाटा, मैं फाउंडर हां YYC होम केयर सर्विसेज दी एंड मैं पैरामेडिका बाय प्रोफेशन। एट YYC होम केयर सर्विसेज असी घरां दे विच होम केयर प्रोवाइड करदे आं जिदे विच असी सरकार नू सिद्धा बिल करदे आं अंडर क्लाइंट डायरेक्टेड होम केयर इनवाइसी प्रोग्राम। इहदे लई गवर्नमेंट फंडिंग हैगी आ। उहदे लई तुहानूं कोई भी क्वेश्चन होण तुसीं सानूं फोन कर सकदे आं 8257600983 ते। थैंक यू।
0: कैनेडा विच रहंदिया इंश्योरेंस दी बहुत अहमियत है। किसी भी तरह दी इंश्योरेंस लई पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो। सुपर वीजा, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, RESP दियां वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू। ए इंश्योरेंस लई नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन। होर जानकारी लई पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो।
2: अपने घर दा दूजा नां आ सुकून ते कैनेडा च घर खरीदना एक वड्डी चुनौती।
3: घर खरीदण तो पहला इत्मीनान नाल किसी प्रोफेशनल दी सलाह जरूर लाओ।
2: वधिया घर खरीदना, पैसे बचाने ने, सिरदर्दी तो भी बचना ते याद कर लो एक नाम मनदीप सिंह गिल।
3: सिर्फ घर खरीदण लई ही नहीं बल्कि वेचना भी होवे तां बिल्कुल सही सलाह देणगे मनदीप सिंह गिल।
2: घर खरीदण ते वेचण लई मैक्सवेल सेंट्रल दे नाल काम करदे मनदीप सिंह गिल देणगे वधिया सलाह ते प्रोफेशनल सर्विस।
3: भरोसेयोग रियल्टर मनदीप सिंह गिल दा नंबर नोट करो 403-617-1868।
2: जेकर कर रहे हो घर खरीदण ते वेचण दी प्लानिंग मनदीप सिंह गिल नू कॉल कर लो जां विजिट करो उहनां दी वेबसाइट mandeep.realtor।
3: मैक्सवेल सेंट्रल दे रियल्टर मनदीप सिंह 4036171868।
5: फ्लाइट बहुत लेट हो गई, खान ले बर्गर ले लिए।
6: ना जी, अप्पा ते गर्मा गर्म रोटी खावांगे।
5: माले नखरे ना करो, मेथों रात दे 3 बजे रोटियां नहीं पकदियां।
6: ओहो, तुहानू नहीं कष्ट देना, अप्पा चलना समोसा हाउस इंडियन कुजीन एंड स्वीट्स जो 24 घंटे खुले हुंदे ने।
5: समोसा हाउस इंडियन कुजीन ब्रेकफास्ट विच गर्मा गर्म परौठे, लंच एंड डिनर विच पूरियां, छोले भटूरे, फिश टिक्का, चाइनीज इंडियन फूड, हर प्रकार दी मिठाइयां अते केटरिंग भी करदे ने। इंडियन कॉफी अते कुल्लर स्पेशल चाह भी इन्हां कोलों मिलदी है। हर प्रकार दे खाने वाले शानदार रेस्टोरेंट समोसा हाउस इंडियन कुजीन एंड स्वीट्स ओपन 24 आवर्स। यूनिट 2154-43-10104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कॉल 403-400-CART-CART-CART 403-461-6161।
7: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदियां ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान। ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंद दी फ्लोरिंग दा समान। फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान, कारपेट, हार्डवुड, लेमिनेट, टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनां नाल भरिया है इन्हां दा शोरूम। अज ही इन्हां दे शोरूम ते पुज्जो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
2: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा। कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
3: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
2: तुहाडी

फ्राइडे जून 5, 2026 साल का 156वां दिन है आज, 209 दिन साल के बाकी हैं। It is 19 degrees right now in Calgary. 21 था आधा घंटा पहले। Assalamualaikum, Namaskar, Sat Sri Akal, and good Friday evening to all of you. Program Sangeet being brought to you by Sur Sangam Radio, your weekly dose of entertainment, information, and hit Desi music, your Friday drive home show. स्टूडियोज के नंबर 4037171947। कोई तारीफ तनकीद छोटी सी बात मशवरा हो, यू विल कंटिन्यू टू सफर इफ यू हैव एन इमोशनल रिएक्शन टू एवरीथिंग दैट इज सेड टू यू। यानी अगर आप हर सिचुएशन के साथ इमोशंस अटैच कर देंगे, जॉब पे, घर में, बाहर, सोसाइटी में, Anything which is being said to you, अगर हर सिचुएशन के साथ आप इमोशंस अटैच कर देंगे तो क्या होगा, यू विल कंटिन्यू टू सफर। इमोशंस जो होते हैं वो कुछ खास रिश्तों के लिए होते हैं, घर में बच्चे, बीवी, हस्बैंड या कुछ खास लोग, लेकिन हर सोसाइटी के बंदे ने आपसे क्या कहा, जॉब पे क्या कहा, वर्क प्लेस पे क्या कहा, कुलीग ने सोसाइटी में क्या कहा आपसे, अगर एवरी टाइम आपका इमोशनल रिएक्शन है उस पर तो क्या होगा, यू विल कंटिन्यू टू सफर। प्रोग्राम संगीत आज की पहली प्रेजेंटेशन की तरफ आपको लेके जाना चाहूंगा। ये गाना बहुत हिट था अपने वक्त में और इसके कुछ लाइनें हैं दो तीन जो सोशल मीडिया में एज ए पीस लेके हर वीडियो के पीछे लगाई जाती है, राइट हेयर आ कहीं दूर चले

even more. A lot more. Keep listening. Sangeet Studio, Sean ke saath. Welcome back 94.7 FM पर टाइम हो गया 5:15 एक्चुअली पूरे वेस्टर्न अल्बर्टा में हो गए सिर्फ स्टूडियो में नहीं ऐसे करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन और इसके बाद फिर प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे इन्फॉर्मेशन में पहली बात ये कर लेते हैं कि जो रेफरेंडम 19 को होने जा रहा है अल्बर्टा सेपरेशन से रिलेटेड कि फिर एक रेफरेंडम होगा जिसमें फैसला किया जाएगा तो अगर इसमें रिजल्ट आते हैं टाइप की जो भी हरकतें चल रही हैं बहुत ही नॉनसेंसिकल अच्छा अब उसमें मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कितना फर्क होता है कल्चर्स में और इलाकों में अगर हमारे मुल्कों में अपने साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान में कभी कोई ऐसा हो कि मुल्क तोड़ने की अलग होने की बात करे और वो गवर्नमेंट में भी हो और वो ये कहे कि मैं नहीं कहता कि मैं वोट किसको डालूंगा मैं इस सूबे को तोड़ने के लिए डालूंगा या इस मुल्क के हक में डालूंगा तो लोग सीरियसली उसको पता नहीं क्या क्या लेबल्स लगा देंगे और क्या क्या कह देंगे और उसका जीना मुहाल कर देंगे वो अपने ऑफिस में अपने मोहल्ले में ना जा सके पर यहाँ सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है अब अल्बर्टा के कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के मिनिस्टर हैं नाम है उनका डेविन ड्रेशन उन्होंने जब उनसे आज पूछा गया कि आप किसको वोट डालेंगे अल्बर्टा के कैनेडा में रहने में या अलग होने में तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बता सकता तो उनसे बार बार ये पूछा गया कि आप किसको वोट डालेंगे तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा कि मैं कनाडा के रहने के लिए वोट डालूंगा और इसका मतलब यह है कि क्योंकि सवाल उनसे ये नहीं किया जा रहा था कि सेपरेशन के लिए डालेंगे कि नहीं उसे कनाडा के लिए डालेंगे कि नहीं तो उन्होंने कहा नहीं जवाब दूंगा इसका अच्छा ये सिचुएशन जाहिर है बड़ी अजीब सी है मसाइल किस मुल्क में नहीं दुनिया के किसी कंट्री में आप चले जाएं स्टेट्स का फेडरेशन के साथ इश्यूज हैं

0: me personally, I love this country and I don't want this country to be broken into pieces by any means, seriously. प्रोग्राम में संगीत, मैं हूं शान. एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और उसके बाद प्रोग्राम में फिर बढ़ते हैं आगे.
1: Your voice. Zara Vakri type ki presentation.
2: Full of masti, full of information.
1: Program is being presented by Sean. Stay tuned.
2: Stay tuned. Stay tuned.
3: Kalgiri de main patakoti, tere naam laga daange.
4: Pura saal ho gaya gana sundi. Bas. कैलगरी च कार लैन दिया फीलिंग आई ले जायो. वीरे दी फैमिली ने भी टोरंटो तो कैलगरी मूव होने दा मन बना लिया है. उन्हां दे आउण तो पहला मेनू कार चाहिए था.
5: मेरी काली गल होई है रियल्टर जग्गी ते लोहरा नाल. जिन्ना दी सलाह नाल हुन कार एक नहीं दो लवांगे. पहला अपने लई ते दूजा तेरे वीरे लई. मैं सुनया जग्गी ते लो पूरे प्रोफेशनल तरीके नाल समझांदे है.
4: जी हां, मैक्सवेल सेंट्रल रियल्टी नाल काम करदे जग्गी टिल्लो नाल एक बार जरूर गलबात करो. जग्गी टिल्लो दा फोन नंबर है 406-16-2445-403-616-2445.
6: फ्लाइट बहुत लेट हो गई. खान ले बर्गर ले लिए.
7: ना जी, अप्पा ते गर्मा गर्म रोटी खावांगे.
6: माले नखरे ना करो, मेथो रात दे 3 बजे रोटियां नहीं पक दिया.
7: ओहो, तुहानू नहीं कष्ट देना. अप्पा चलना है समोसा हाउस इंडियन कुजीन एंड स्वीट्स, जो 24 घंटे खुले हुंदे ने.
6: समोसा हाउस इंडियन कुजीन, ब्रेकफास्ट विच गर्मा गर्म परौठे, लंच एंड डिनर विच पूरियां, छोले भटूरे, फिश टिक्का, चाइनीज इंडियन फूड, हर प्रकार दी मिठाइयां अते केटरिंग भी करदे ने. इंडियन कॉफी अते कुल्लर स्पेशल चावी इना कोड़ो मिल दिए. हर प्रकार दे खाने वाली शानदार रेस्टोरेंट समोसा हाउस इंडियन कुजीन एंड स्वीट्स. ओपन 24 आवर्स. यूनिट 2154-4310-104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी. कॉल 403-400-CART-CART-CART 403-461-6161.
8: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੈਕ ਤਾਲੀਵਾਲ ਕੰਟਰੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਨਵੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੀਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੂਗੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ. ਜੀ ਹਾਂ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੰਜਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ. ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਰੂਟੀਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੰਜਨ ਗਾਰੰਟੀ ਕੰਟਰੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੈਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ 403-702-5479, ਔਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 180 ਸਟੋਨਹਿਲ ਗੇਟ ਨਾਰਥ ਈਸਟ.
0: Sit back, relax, and fasten your seat belts. This is going to be a hell of a ride. Ek dam chikas. Hey, bro. Chikas bole to ek dam dhasu. Dhasu bole to cool.

0: We want to hit you hard with hit music. Because when hit music hits, you feel no pain. Keep listening, keep driving with Sean.
1: ट्रक चाड़न लई थब्बा नोटा दा लगदा है होर ता होर ट्रका दी इंश्योरेंस बंदे दा धुआं कढ़ दिंदी है ते दुहाइयां फिर बंदा पौंदा है
2: सुनो सुनो सुनो ट्रकिंग कंपनियां दे मालक ते ट्रक ओनर जरा ध्यान नाल सुनो ट्रका दी सस्ती इंश्योरेंस दा हल हुण आ गया ट्रका वास्ते इंश्योरेंस दे रेट लैण लई सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा नाल 587-832-1208 ते संपर्क करो तजर्बेकार इंश्योरेंस ब्रोकर मानस पहुजा ते उन्हां दी टीम प्रोफेशनल सेवावां दिंदे हन बेस्ट ट्रक इंश्योरेंस रेट्स लई याद रखो सोनिक इंश्योरेंस 587-832-1208

0: संगीत स्टूडियो।
1: वेलकम बैक, प्रोग्राम है संगीत। मैं हूं शान, आपका बहुत बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ट्यूनिंग इन। मेरा और आपके साथ रहता है हर फ्राइडे को इसी चैनल पे, यानी 94.7 एफएम पे। पाकिस्तानी एक राइटर थे, बहुत ही कमाल के ड्रामे लिखे, पंजाबी में भी लिखते थे और उर्दू में भी लिखते थे। उनकी एक पंजाबी की नज्म है जिसे आप कहते हैं आजाद शायरी टाइप की नज्म, बहुत ही खूबसूरत है, मनु भाई की। उवी खूब दिहाड़े सन, उवी खूब दिहाड़े सन, भुख लगती सी मंग लेंदे सा, मिल जांदा सी खा लेंदे सा, नहीं नहीं सी मिलता, माफ कीजिएगा, नहीं सी मिलता ते रो पेंदे सा, रोंदे रोंदे सौ रेंदे सा। ये भी खूब दिहाड़े ने, यानी आजकल के भी दिन है, ये भी खूब दिहाड़े ने, भुख लगती है मंग नहीं सकते, मिल जांदा ते खा नहीं सकते, नहीं मिलता ते रो नहीं सकते, ना रोइए ते सौ नहीं सकते, वो भी खूब दिहाड़े सन। प्रोग्राम में संगीत आज की आखिरी प्रेजेंटेशन आपकी नजर करने लगा हूं मैं, राइट हियर। अताउल्ला खान ईसा खेलवी का बहुत ही पॉपुलर फोक, निससिए जागदी रे।

0: नहीं वेला गया हथ ना वे टाइम पहले कभी रुका है ना आज रुकेगा फ्राइडे का संगीत हुआ तमाम आई विश ऑल ऑफ यू लव पीस रिस्पेक्ट हेल्थ एंड वेल्थ आपसे मुलाकात होगी अगले फ्राइडे को इसी टाइम इसी चैनल पे फिर आएंगे घर खुदा लाया
1: शुक्रिया आपने संगीत स्टूडियो ट्यून किया शुक्रिया
2: The time is 6 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.